गुण नाही, आपे तरस पे होए, तरस पे आ मेर मत होए, सतगुर साजन मिलिया, नानक नाम मिले थान जीवन,

सुन के जम के दूत नाए तेरे छाट जाहे बोजलग बिकमस गाहो कर शब्दी पार पाहे जिन खोला की पिहास अमृत से खाहे खाल महे एहो पुन गुण गोविंद गाहे सबसे नोखिल पालस माले साहे साहे बिरता कोय न जाहे जे आवे तुराहे श्लोक महला पंजवान अंतरगर हाडना जीवा जप गुर नाओ नेतरी सतगुर फेकना सुरवाणी सुरना गुर नाओ सतगुर सेती रातिया दरगा पाया ताओ काहो नानक कृपा करे जिसनो ए वट दे जग मह उत्तम खडिया है विरले के कहे महला पंजवा राके राक नहार आपु बारियां गुर की पेरी पाए खज सवारियन ओह आप त्याल मन हो ना विसारियन सरजना के संग बाव जल तारियन सकत निंद के दुष्ट किन माय बितारियन जिस साहेब की टेक नानक माने माय जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए जिस साहेब की टेक नानक मन माय जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।